0: Like our gold.
1: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
5: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

0: चोर
1: भूल गए
0: जान मेरा नाम चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
0: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
0: प्यार का मौसम
1: बेशरम।

0: Like a Gold
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आ रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: लाइक आ गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

ना भी जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए सिद्ध।

सुनिए हाथ वैसगा, नानक भक्तां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन्ने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पिछे।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार।

मलेच्छ मल भक्खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई। जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवै लखवीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एत

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई।

0: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।
1: ब्रेकफास्ट विद डीप राजा।
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
2: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
1: This is Leica Gold.
4: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड। बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।

0: है लाइका गोल्ड।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी। खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।
2: खतरों के खिलाड़ी।
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉब के शोरूम्स में आइए या फिर की फर्नीचर .co.uk पर जाएं।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल Auto protected.
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer. Terms and conditions apply. Start.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
2: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
2: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
2: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms, conditions apply.
2: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
3: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
4: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
3: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
4: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
5: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
6: इल्फर्ड अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए
7: बीकानेर वाला परंपरा भी
8: फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड गैंसिल इल्फर्ड IG26HA कॉल 07555-506015
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
10: Like a Radio Network Proud Hospitality Partner Ragasan On this week's Like a Extra Podcast Kush and Deep Raja discuss honor-based abuse
11: When people are going to get help, those additional perpetrators aren't necessarily being recognised. The primary perpetrator, the husband, was captured, but, you know, the rest of the key players behind the scenes weren't recognised. And we need to kind of be talking about this more so the professionals can catch, you know, all of the perpetrators of this abuse that carry it out.
10: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Breakfast with Deep Raja.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Honslo, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
2: Bikaner wala parampara bhi.
3: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT. कॉल करे 07487-687-885.
4: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
5: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
6: It's Yesudas, by the way.

0: एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com। Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
2: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners like a radio network.
1: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 hour line.

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal.

0: Leica Gold.
1: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Khatron Ke
2: Khiladi. 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
3: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Leica Radio Network.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
6: Dad,
7: what's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
8: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
11: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई। 10 days साउथ अफ्रीका एवरी मंथ फ्रॉम नवम्बर टू मार्च। बुक बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ एंड गेट 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
13: Up next, Ritu Sharma with the Ritu Sharma Show on Leica Gold.
14: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
13: Breakfast with Deep Roger.

0: लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में सिलसिला फिल्म से था ये गाना शिव हरी के म्यूजिक पर, और उससे पहले आपने सुना ऐसा समा ना होता, क्या गाना गाया है लता जी ने, और इसमें म्यूजिक था आरजी बर्मन का। फिल्म थी 1984 की जमीन आसमान। लीजिए तो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के संडे के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। आज 2 अगस्त है और मुझे उम्मीद है आप सब आज के दिन भी बिल्कुल अच्छे हैं, मजे में हैं, खुश हैं, और आपके मैसेजेस तो बता ही रहे हैं कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। तो चलिए, जहां पर भी बैठकर आप इस शो को सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। ऋतु शर्मा हूं मैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, और 1 बजे तक यही रहूंगी आपके साथ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और आपको बता दें कि 1 pound आज आपको देगा 127.65 भारतीय रुपए, और हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.

0: सुपर हिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी से लिया था ये गाना और क्या म्यूजिक बनाया था नदीम श्रवण ने। वैसे 90s के दौर में ये मेलोडियस म्यूजिक लाने का क्रेडिट नदीम श्रवण को ही दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जब आशिकी के गाने बनाए और वो सुपर डुपर हिट हुए तो इस तरह की फिल्मों में गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही, लेकिन आप जानते हैं इस फिल्म को पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछा गया था करने के लिए, जूही चावला को पूछा गया था, पूजा भट्ट ने तो फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन बाद में ये फिल्म करिश्मा कपूर को मिली और देखिए क्या सुपर डुपर हिट फिल्म रही। और आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, आप सभी गीतों को पसंद कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आप लाइका रेडियो नेटवर्क सुन रहे हैं, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मैं हूं ऋतु शर्मा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वीकेंड्स पर 10 से 1 मैं आपके साथ रहती हूं। और आप भी आ चुके हैं, आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। थैंक यू प्रज्ञा, कहती है गुड मॉर्निंग ऋतु, मैं भी आ गई हूँ, स्वागत है आपका। थैंक यू मोहम्मद अयूब चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरमीत जी सुन रहे हैं, कहते हैं वेलकम जी, कैरी ऑन, ऐसे ही गीतों का सिलसिला कंटिन्यू रखिए। जी बिल्कुल, कोशिश तो ऐसी ही रहेगी कि ऐसे गाने बजाऊं जो आप सबको पसंद आए और आप हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए गुरमीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संध्या भावसर जी, पुनीता कहती है ऋतु आई लव यू, तो मैं कहूंगी आई लव यू पुनीता जी, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू अर्जुन जी, तोजी जी, गीता जी, सुरजीत जी, भरत गंगाराम जी, जासू जी, महेंद्र जी, और हमारे साथ हैं मौसुमा जी, स्वागत है आपका। मिसेस शेख अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं, एंड थैंक यू हमारे राजीव जी, कहते हैं हैप्पी संडे, काम भी करता रहूँगा और आपको सुनता भी रहूँगा। ये तो बेस्ट वे है रेडियो सुनने का, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कोई भी काम नहीं रुकता, बल्कि काम कब खत्म हो जाता है ये पता नहीं चलता। थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू हरीश खत्री जी, मृदु जी, निर्मला जी, महेंद्र जी एंड ऑफकोर्स हमारे विजय गुडूरी जी, आपने हमेशा किस तरह आज भी एक खूबसूरत विचार हमारे साथ शेयर किया और कहते हैं कि बात छोटी है मगर सच है, अपनापन तो सब दिखाते हैं लेकिन कौन अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है, क्योंकि बुरे वक्त में या ज़रूरत पर जो साथ देना वही असली दोस्त होता है। और बहुत सारे दोस्त आजकल के दुनिया में सिर्फ ज़रूरत के होते हैं, ज़रूरत की दोस्ती करते हैं, काम के दोस्त होते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जो हर वक्त हर समय आपका साथ दें। तो आज दोस्ती दिवस, मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे भी तो है, इसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक हमारी बहुत प्यारी लिसनर है मनीषा शाह, आपका भी मैसेज पढ़ ली और आपने कहा ऋतु मैं डेस्परेटली वेट करती हूँ वीकेंड का कि कब आप आओ, शो शुरू हो और मैं आपको सुनूं। क्या कहूँ मनीषा, बस यही कहूँगी आई लव यू, थैंक यू इतने प्यार के साथ हमेशा ही मेरा साथ देने के लिए। और अब जब आप सब इतना प्यार मुझे दे ही रहे तो मैं भी ये प्यारा सा गाना आप सबके नाम कर दूं। चलिए फिर,
1: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: कैसे एक फूल दो माली फिल्म से था ये गाना आशा भोसले की आवाजों में, जिसे आपने अभी सुना आपके मन पसंद रेडियो से।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है लाइका गोल्ड।
0: जी बिल्कुल, ये लाइका गोल्ड है, लंदन में लाइका रेडियो है, मैनचेस्टर और मिडलैंड्स में, और ऋतु शर्मा है आपके साथ 10 से 1 साथ देने के लिए। और आज हमारे बहुत सारे साथी फ्रेंडशिप डे यानी कि मित्रता दिवस मना रहे हैं, और आपने मुझे हैप्पी फ्रेंडशिप डे के बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। और संध्या भावसर ने तो मेरे लिए दो लाइनें भी लिखी हैं, कहती हैं, तेरे शो में हो गए घायल, तेरे ही शो में हम हो गए पागल। क्या बात है, होश में रहिए, ज़्यादा पागल मत बनो संध्या। लेकिन आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उस दिन सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जितनी अच्छी आप बातें करती हैं ना, बिल्कुल वैसी ही प्यारी आप हो, मिलकर दिल खुश हो गया। कुछ हमारे लिसनर्स होते हैं ना, जब उनसे मिलना होता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो चेहरे को आवाज़ को चेहरा मिल जाता है, और जो हमें मैसेजेस भेजते हैं उनसे भी मिलने का मौका मिलता है, तो ये खुशी डबल होती है। तो सभी मेरे दोस्तों को, सभी मेरे साथियों को आज फ्रेंडशिप डे की या मित्रता दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और आज आप सबके लिए

0: मैं भी कुछ लाइंस कहना चाहूंगी, और ये लाइंस उन सभी खास दोस्तों के लिए है जिनके साथ आपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिताया है, समय बिताया है, या फिर वो आज भी आपके साथ है, आज भी आपके साथ दोस्ती निभाई है। तो उन सब के लिए जाती है ये चार लाइनें कि चलो आज उन पुराने पन्नों को पलटते हैं, चाय की एक एक घूंट के साथ पुरानी यादों में टहलते हैं। याद है वो स्कूल का घंटी बजते ही मैदान में भागना, इंटरवल से पहले ही छुप छुप कर टिफिन का खा जाना, एक ही साइकिल पर तीन तीन सवारियां चलाना और पकड़े जाने पर एक दूसरे का नाम लगाना, ना मिलने की शर्त ना कोई हिसाब होता है, दोस्ती का रिश्ता तो बस बेहिसाब होता है। जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब कदम थकने लगते हैं तो यकीन मानिए एक पुराने दोस्त की एक कॉल से चेहरे खिलने लगते हैं। न कोई दिखावा न कोई औपचारिकता, यहाँ जहाँ हम बेफिक्र हम रह सकें वही तो है वो जहाँ। कोई रूठे तो हंसा कर मना लेना और कोई गिरना चाहे तो चुपके से संभाल लेना। रुपए पैसों से नहीं तुलती यह अमीरियत साहब, सच्चे दोस्त का होना ही है सबसे बड़ा खजाना। और अगर आज भी आप किसी अपने अच्छे और सच्चे दोस्त के संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही फ़ोन उठाइए और अपने उस पुराने दोस्त को कॉल करके कहिए सुन यार तेरी बहुत याद आ रही थी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और ये गाना मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: Feel Good Classics Non-Stop with Ritu Sharma. This is Like a Gold.

0: Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 96.48 pounds per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
4: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
3: Khatron Ke Khiladi.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271. लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
8: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344 or 24-hour line.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.

0: ये जो आराधना फिल्म है ना, ये राजेश खन्ना के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म मानी जाती है। और जानते हैं, इस फिल्म में काम करने के लिए राजेश खन्ना ने साफ साफ मना कर दिया था। जब शक्ति सामंता ने उन्हें अप्रोच किया तो राजेश खन्ना कहते हैं कि इस फिल्म में मेन रोल हीरोइन का है, मेरा रोल तो थोड़ा सा है, फिर मैं मर जाता हूँ, देन फिर बेटे के रूप में जन्म लेता हूँ, ये क्या कहानी है, मुझे तो कुछ पसंद नहीं है। लेकिन उन्हें समझाया गया और उस समय राजेश खन्ना हिट भी नहीं थे और फिर उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कहा। और देखिए, ये फिल्म ने तो उनकी जैसे किस्मत ही बदल दी। और आज भी जब भी आराधना फिल्म का नाम आता है तो राजेश खन्ना का नाम पहले आता है। इस फिल्म से था ये गाना जिसमें रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ें थी, और उससे पहले आपने किशोर दा और आशा जी की आवाज़ें सुनी फिल्म ये वादा रहा से। और इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम का सेकेंड आवर शुरू हो गया। और इस आवर में भी मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत भरा सलाम। आज बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है। हमारी फरीदा जी कहती हैं कि मेरी लाइफ तो इन दो लाइनों के समान है, फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मज़े की प्यारे जिंदगी हमारी है, हम चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही रहे। और इसके अलावा शब्बीर जी जो हमारे बहुत प्यारे लिसनर हैं कहते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, साउथ वेल्स जा रहा हूँ और मैंने रुक कर सर्विस स्टेशन पर रुककर ये दो लाइनें लिखी हैं और भेज रहा हूँ। और आपने लिखा है कि तमन्ना है सितारों की, तमन्ना है सितारे की, न चाहत है नज़ारे की, जब तुम जैसे दोस्त मिले तो क्या ज़रूरत है हज़ारों की। यस, क्या बात है। दोस्त तो मुझे लगता है जो अच्छा होता है वो एक या दो ही होते हैं, बाकी तो भीड़ होती है, ज़रूरत वाले दोस्त होते हैं, क्योंकि आप सारी बातें सबके साथ शेयर भी नहीं कर सकते, बिकॉज सबके साथ ट्रस्ट बनाना इज नॉट ईजी। ट्रस्ट तो सिर्फ एक या दो से ही बनता है, इसलिए खास दोस्त तो एक या दो ही होते हैं। और निर्मला, आपने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटो हमारे साथ शेयर की है, क्या वो अब भी आपकी दोस्त है? क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें आप शेयर कर रहे हैं। थैंक यू विजय गुनोवा जी, आप हमें सुन रहे हैं। नलिनी जी, थैंक यू, गीतों को पसंद कर रही हैं। और ये है गुरमीत जी, आपने भी फ्रेंडशिप डे का बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा आपको कविता अच्छी लगी। और आपने भी लिखा है कि दर्द उनकी आँखों में, आंसू हमारी आँखों में, सदा खुश रहो। या दोस्ती यही होती है, ऐसी ही दोस्ती होती है। सो थैंक यू साथ देने के लिए। और मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, जरूर उनका जिक्र करूंगी, लेकिन फिलहाल ये तो बता दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 127.65 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: So thank you Amita ji, aapke message ke liye. Thank you Hamisha, Himanshu Patel ji, Mrs. Fake Chiang, thank you, Divya ji, thank you, aur jitne bhi, aur Gurudev Ganja, aap bhi hame sun rahe hain, so saath dene ke liye dhanyawad. Aur aaj socha, kyun na Kishor Da ki jodi banwaun Lakshmikant Pyarelal ke saath, kyunki hum hamesha Kishor Da aur आरडी बर्मन का ही कॉम्बिनेशन प्ले करते हैं और उन्हीं की बात करते हैं कि आरडी के साथ ही किशोर दा ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने सबके साथ बहुत अच्छे गाने गाए हैं। इनफैक्ट ये गाने सुनिए, हैं तो बहुत सारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ अच्छे अच्छे किशोर दा के गाने, लेकिन क्योंकि मैं दो बजाती हूँ तो मैं दो चुनकर लाई हूँ, सुनवाती हूँ आपको पहला गाना आपसे बस थोड़ी ही देर में, आज की जोड़ी नंबर वन का।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.8% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
7: ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danu. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Dad,
11: what's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX, or call 02203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
4: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99, exclusively at quality food stores.
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham this October. For sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
15: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
16: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ किशोर दा ने कुछ बहुत ही मेमोरेबल गाने गाए हैं। आज ऐसे ही दो गाने सुनवाने वाली हूँ। एक तो ये पहला गीत हम सभी का फेवरेट, जिसे दाग फिल्म से लिया था और ये भी राजेश खन्ना और आई थिंक शर्मिला टैगोर की ही फिल्म थी। और इस गाने को सुनकर ढेरों मैसेजेस आए हैं थैंक यू साथ देने के लिए। एंड शर्फून, आपने लिखा है कि आज आपकी एनिवर्सरी भी है तो कोई अच्छा गाना हमारे नाम कीजिए। ओके, तो मैं आपके लिए ज़रूर कोई अच्छा सा गीत लगाऊंगी, लेकिन हमारी ओर से आप दोनों को एनिवर्सरी की ढेरों बधाइयाँ। एंड बॉबी जी, आपका भी मैसेज मिला है, कहते हैं आप ठीक है, लवली शो एज ऑलवेज, और ये आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना है, आपके नाम कर दूँ। चलिए, मैंने आपके नाम पर किया। और अब अगला गीत भी मुझे लगता है आपका और हमारे बहुत सारे साथियों का फेवरेट होगा, क्योंकि इस गाने के लिए भी मुझे अक्सर रिक्वेस्ट आती है। तो सोचा आज राजेश खन्ना और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है जोड़ी नंबर वन, तो इस गाने को भी बजाया जाए। सुनिए जरा।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

दुनिया का घर फिल्म से था ये गाना, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, किशोरदा की आवाज, और ये था हमारे आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना। और जानते हैं लता जी ने किशोरदा के साथ एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किशोरदा का वो कौन सा गाना है जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो लता जी ने इसी गाने का नाम लिया था। इनफैक्ट उन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके किशोरदा को भेजा भी था। ये किस्सा मैंने सुना है, पूरा क्या है वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था। तो ये गाना आप में से बहुत सारे साथियों का फेवरेट भी है। शीतल जी का कहना है एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल चॉइस ऑफ टू सॉन्ग्स, थैंक यू, आपको ये गाने पसंद आए। विजय जी आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि किशोरदा का ये गाना है जो कि हमारा जो लाइफ है ना उस पर बिल्कुल फिट बैठता है।

0: देखिए, आपके बच्चे को खसरा और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे समुदाय में आसानी से फैल सकती हैं। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीके हर साल 5,000 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं, और ये जानकर आपको भरोसा होगा कि NHS द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर के लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से लगाए जा चुके हैं। समय पर टीके लगवाना सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो आप अपने GP से संपर्क करें और वो छूटा हुआ टीकाकरण पूरा करवाइए। क्या आपके बच्चे के सभी टीके समय पर लगे हैं? ये चेक कीजिए रेड बुक में देखकर, या फिर अपने GP प्रैक्टिस से बात कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए nhs.uk/childhood-vaccinations पर।
1: This is Ritu Sharma.
0: और अब अगला गाना शरफून के साथ साथ जितने भी लोग अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं आप सबके नाम पर जाता है।

0: जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, पुनर्जन्म की कहानी इस फिल्म में थी, लोगों को हजम नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज इस फिल्म को देखते हैं तो फिल्म बहुत अच्छी लगती है, और मुझे तो तब भी पसंद आई थी और अब भी पसंद आई थी। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जब ये फिल्म नहीं चली जिसे बहुत ही मन से सुभाष घई ने बनाया था, तो उनका दिल थोड़ा टूट गया था। लेकिन इस फिल्म से सिमी गरेवाल को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और इसके गाने एक से बढ़कर एक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक हमेशा ही कमाल का होता है, इस गाने में भी कमाल का ही था। और ये गाना आप सभी को हमने डेडिकेट किया। मिथुन पटेल जी, थैंक यू, आपको आज की जोड़ी के दोनों गाने पसंद आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरन कपूर जी जर्मनी में प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू साथ देने के लिए। और बस प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम और आप खेलेंगे थ्री वर्ड्स गेम और सुनवाऊंगी कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स भी। लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का समय आ गया है।
1: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.
2: Leica Extra Podcast Update.
0: तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है ऑनर बेस्ड अब्यूज, जिसे दीप राज और खुश ने होस्ट किया है। और आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is Leica Gold.
3: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 0192322-7274। बुक योर टेबल टुडे। लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर UK पर जाएं।
8: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
9: बीकानेर वाला परंपरा भी,
10: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
11: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192-388-3100. Atoll protected.
12: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddha Ayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.

0: कभी।
1: ये गाना मेरे बहुत सारे लिसनर्स का फेवरेट गाना है। आपके मैसेजेस आए हैं और जासू जी कहती हैं कि रितु ये गाना मेरे नाम कीजिए, एंड फरीदा गुलाम अली जी आपका भी यही कहना है, एंड चंदू शाह कहते हैं कि आई एम वेरी लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू एंड सेम टू यू। मैं भी बहुत लकी हूँ कि मेरे पास भी इतने सारे अच्छे साथी हैं इस रेडियो के थ्रू जो हमारे दोस्त बने हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप सबका इतना प्यार मिलता है, तो मेरी ओर से एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे या कहूँ मित्रता दिवस की ढेरों बधाइयां।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज ये 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is 96.48 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM.
4: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV.
5: Khatron Ke Khiladi.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
3: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
4: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
3: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 PM. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Laika Radio Network.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410, साफो ट्रेवल. At all protected.
8: Start

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
6: क्लासिक्स टू मेक योर वीकेंड्स फील गुड. दिस इज रितु शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड.

0: लीजिए, दो खूबसूरत गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से सभी को कहना चाहती हूँ प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और इस आवर में हम खेलते हैं थ्री वर्ड्स गेम, और मैं आपको सुनवाती हूँ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स भी, जिनकी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले विजय घुनवा जी, आपको भी मित्रता दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और आपने लिखा है, दोस्ती को मत आजमाओ ए दोस्त, दोस्त तो वो है जो बारिश में दोस्त के भीगे हुए चेहरे से भी आंसू पहचान लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, दोस्त आपके मन की बात कभी कभी घर वालों से भी ज़्यादा जान लेते हैं, और दोस्त आपको घर वालों से भी ज़्यादा पहचान लेते हैं। उन्हें सब समझ होती है कि किस बात से आप आहत हैं, कौन सी बात आपको बुरी लग रही है, जिसे आप घर वालों से नहीं कह पाते कि कहीं कह दिया तो रिश्ता ना बिगड़ जाए। क्योंकि कई बार परिवार में बचपन में जो बात रहती है वो बड़े हो जाने पर नहीं रहती। बचपन में आप भाई बहनों से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो समझकर सोचकर बोलना पड़ता है, क्योंकि तब उन्हें बुरा लग जाता है। और ये बात समझ नहीं आती कि जो भाई बहन बचपन से साथ हैं वो बड़े होकर एक दूसरे की बातों को बुरा क्यों मानने लगते हैं। लेकिन दुनिया ऐसी ही है, सोच समझ कर बोलना पड़ता है अगर रिश्ते को बचाना है तो। एनीवेज, 12:15 बजने वाले हैं, एंड आई एम श्योर आपकी थाली पर लंच सज चुका होगा या आपके ऑलरेडी पेट में जा चुका होगा। जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए, मैं लंच के बाद बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि पता है ना फिर मेरी भी भूख भड़क जाएगी। लेकिन कैफ़े की बात ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है मुसाफिर कैफ़े, और मैं आजकल उसको देख रही हूँ। अभी ही वो ऐड हुई है तो मैंने चलाई, और मैंने एक एपिसोड देखा तो मुझे अच्छा लगा, देन फिर तुरंत मैंने दूसरा देखा, मुझे और भी अच्छा लगा, फिर मैंने सेम टाइम पर तीसरा भी देख लिया। फिर मेरा चौथा भी देखने का मन था, लेकिन मैंने कहा नहीं अब बाद में देखूंगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो मुझे वो अच्छा लगा, उसमें विक्रांत मैसी हैं जो 12वीं फेल में थे, और अच्छा सा हल्का फुल्का सा है। मैंने सोचा आप सबको बताऊं, देखिएगा शायद आपको भी पसंद आए। मुझे तो फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, और मैं वेट कर रही हूँ कि कब मुझे दोबारा समय मिले और मैं उसके जो पूरे 8 एपिसोड हैं उन्हें देखूँ। तो अच्छा है मुसाफिर कैफ़े, देखिएगा। फिर अगले हफ्ते हम उसकी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हमें बात करनी है किसकी, हाँ अपने थ्री वर्ड्स गेम की, याद है ना। तो चलिए, थ्री वर्ड्स गेम के बारे में बता दूं कि ये तीन वर्ड्स मैं एक बॉलीवुड के गाने की जो शुरू की 3-4 लाइनें होती हैं वहाँ से उठा लेती हूँ और आपको बता देती हूँ, आपको पहचानना होता है गाना कौन सा है। और आज के जो तीन वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है संग, संग जानते हैं ना, साथ, हाँ संग, तुझ संग प्रीत, यस वही वाला संग। दूसरा वर्ड है लिखा, और तीसरा वर्ड है जीवन। 1974 की फिल्म है ये, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है और आवाज़ है किशोर कुमार की। अपने ज़माने का एक बहुत खूबसूरत गाना है, आप पहचानिए कौन सा है, बताइए ज़रा। पहला वर्ड है संग, दूसरा है लिखा, तीसरा वर्ड है जीवन। 1974 की फिल्म है, कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक है और किशोर दा की आवाज़ है। अगर आपको पता है कि ये गाना कौन सा है तो देर किस बात की, भिजवाइए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 127.65 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो लीजिए, हमारी प्रज्ञा का मैसेज आया है, ऋतु मैंने देख ली, बहुत अच्छी है। अरे आप तो फर्स्ट आ गई, आप देख चुकी हैं मुसाफिर कैफे। चलिए अब तो मुझे और भी इंतज़ार है कि मैं जल्दी से जाके बाकी के एपिसोड देखूँ। लेकिन आप तो थ्री वर्ड्स गेम का आंसर ढूंढ रहे हैं ना, हाँ ढूंढकर मैसेज मुझे भिजवाइए, क्योंकि फिर मैं बताऊंगी, मुझे चेक भी तो करने होते हैं कि आंसर सही है या नहीं। लेकिन फिलहाल सुनवाने वाली हूँ आपको आज के आज के आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत जो है यशदास।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Like a Gold.
3: Like a Gold.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
10: I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
11: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
10: So where do we find something like that now?
11: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest use it.
12: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
13: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: पॉन्सलो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
15: बीकानेर वाला परंपरा भी
16: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
18: Deirdre, look. It's the bottom Liz this time, sliding across their car bonnet.
19: Leave them be, Philip. They just claim confident.
18: Claim confident?
19: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
18: Deirdre? Deirdre? Come back here.
20: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: इंडिया राजा के म्यूजिक पर यशुदास की आवाज में सदमा फिल्म का ये गाना क्या खूब गाना है। जासू जी का कहना है कि मेरा फेवरेट गीत है। जासू जी, मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और ये फिल्म आज भी देखती हूँ तो मेरी आंखें, वो जो आखिरी सीन है ना जब श्रीदेवी ट्रेन से चली जाती हैं और कमल हसन उन्हें एक्टिंग करके याद दिलाने की कोशिश करते हैं, आंसू ले आता है। कुछ फिल्में होती ही ऐसी हैं जो क्लासिक होती हैं और ये फिल्म भी उनमें से एक है। यशुदास हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, इसलिए उनकी आवाज़ में ये गीत मैंने आपको सुनवाया। थ्री वर्स गेम चल रहा है, बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत होने वाली है आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक की।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: सुनवाते हैं आपको पहला गाना।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी और कमल बरोद की आवाजों में पारस मनी फिल्म से था हमारा आज का ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक वाला गाना, और आंसर्स मुझे मिलते जा रहे हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो मैं एक गाना और सुनवाऊंगी आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का, दूसरा गीत सुनवाऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि किन किन हमारे साथियों ने सही जवाब दिया है और गीत को सही सही पहचान लिया है।
1: रिची शर्मा ऑन लाइक अ गोल्ड।
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन फॉर द समर शोकेस 2026 एट हैरो स्कूल। एक्सपीरियंस कीजिए वहाँ की richness of Indian classical arts and culture in an unforgettable celebration of music, dance and artistic excellence on Saturday 8th August yani ki next weekend Saturday ko from 3 pm onwards. Tickets available hai from ticketsource.com/bhavan par ya phir unhe call kijiye on 07421 497541 पर। आई रिपीट 07421 497541। दिस इज द नंबर।
1: द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा।
3: This Super Hit Track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to

0: तेरा प्यार है।
1: बिल्कुल, ये सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाज में तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा घबराना। मॉडर्न गन फिल्म से लिया था ये गाना, जो था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और नरेंद्र पांचाल जी, क्या बात है आपका, कुछ अलग ही अंदाज से कहते हैं रा रा रू हे रारी रू ऋतु। यस, ये गाना बहुत ही अच्छा था, सुरमई अखियों में। और यस, श्रीदेवी की एक्टिंग हमेशा याद आएगी जब जब इस फिल्म को देखेंगे। और आपने अपनी फोटो शेयर की है कमल बरोची के साथ। हैरो आर्ट सेंटर में कोई शो हुआ था जिसमें वो आई थी, एंड मैं ये कहूँगी कि क्या लगी हैं आप उनके साथ, आपकी बहुत ही ये प्यारी पिक्चर है। और सच में ये यादें हैं आपने आज हमारे साथ शेयर की है, थैंक यू, ब्यूटीफुल पिक्चर आई मस्ट से। और बस अब मैं बता दूँ आपको कि हमारे वो कौन से साथी हैं जिन्होंने गाने को सही सही पहचान लिया है। तो सबसे पहले आज नाम आता है प्रीति, फर्स्ट आ गई, सही बता दिया। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बेल्जियम से पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, आज सबसे पहले आपने जवाब दिया है। मनीषा शाह, चंदू शाह, उल्लास जी, नरेन पटेल, शरफून, विनोद जी, शालिनी जी, करसन पिंडोरिया जी, अर्जुन जी, सहर जी, महेंद्र बाजारिया जी, शमीम शफीक, कुकी, उषा खोड़ा, विजय गुडूरी जी, अयूब चौहान जी और तोची जी, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। तो बस सही है, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए इस खूबसूरत गीत को सुनने के लिए, अभी बजाती हूँ थोड़ी देर में।
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: लेकिन उससे पहले याद दिला दे कि हॉलीडे जा सकते हैं, दुबई घूम कर आ सकते हैं, समर की वेकेशंस चल रही हैं, साउथॉल ट्रैवल को फ़ोन मिलाइए अगर कहीं हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो। 02085748410 पर उन्हें कॉल कीजिए और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: ये है
4: लाइका गोल्ड,
5: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208782883।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply. We'll be right back.

0: क्या खूबसूरत गाना लिखा है एम जी हशमत जी ने। और आपको बता दें कि ये गाना अपने ज़माने की, जिस साल में ये फिल्म आई थी, बिना का गीतमाला की एनुअल लिस्ट में टॉप पर बजा था। किशोर कुमार ने क्या गाया है इस गाने को। और ये फिल्म बहुत अच्छी है। इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए कल्याण जी आनंद जी को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। और ये फिल्म जया बच्चन की फिल्म है, जिसमें विजय आनंद थे देवानंद के भाई। और अच्छी फिल्म है, कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सिंपल से फिल्म है, लेकिन अच्छी फिल्म है ये, मैंने देखी। और ये गाना तो है ही बहुत ही अच्छा, इमोशनल। रमा जी कहती हैं कि मेरा तो फेवरेट गाना है। क्या बात है, चलिए आपको डेडिकेट कर देते हैं। जैस्मीन जी, भारती जी, थैंक यू, आप सभी ने इस गाने को पसंद किया है। तो बस ये गाना हमने, चलिए, आपके नाम कर दिया। और बस अब क्या कहूँ, जाने की बेला समझो आ ही गई।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। ये है Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold rate is 96.4 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
0: जी हाँ बिल्कुल, ये लाइका गोल्ड है ग्रेटर लंदन में, लाइका रेडियो है मैनचेस्टर और मिडलैंड्स में, और मैं हूँ रितु शर्मा। और बस अगला गीत लेकर जाने वाला है न्यूज़ तक, और न्यूज़ के उस पार गोल्ड पर आपका साथ देंगे अनुराग। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगे आपके साथ जय, और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी आनंदी। लेकिन मैं आपसे अगले हफ्ते सैटरडे को फिर से मिलूंगी। और आपको याद दिला दूँ कि अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लिसन बैक पर जाकर सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर बैक टू बैक क्लासिक सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका गोल्ड ऑनलाइन, लाइका गोल्ड 2। अगर 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका रेडियो 90s ऑनलाइन। और अगर आप पंजाबी गीतों के शौकीन हैं तो आपके लिए है लाइका रेडियो पंजाबी ऑनलाइन। जो मर्जी सुनिए, लेकिन जब भी समय मिले हमारा साथ दीजिए। नेक्स्ट वीक तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
3: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
1: This is Leica Gold.
4: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV.
5: Khatron Ke खिलाड़ी
6: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट travelhubworld.com.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
10: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 p.m. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Leica Radio Network.
11: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
9: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
15: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
14: Southall Travel.
15: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
14: Southall Travel can take you there.
16: Southall Travel, at all protected.
17: Up next, Golden Rug with Unrug on Leica Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: किशोर दा लता जी की कमाल की आवाज और राजेश रोशन साहब का खूबसूरत संगीत, फिल्म नटवर लाल का ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना जो रेखा जी के खुद के कलेक्शन में भी मुझे लगता है बेस्ट फाइव में शुमार होता होगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोल्डन राग की सुपर संडे वाली इस महफिल में। मैं हूं आपके साथ अनुराग और गोल्डन वर्ड का भी कीजिए आप इंतजार, लेकिन उससे पहले फिल्म मिस्टर नटवर लाल से जुड़ी कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि कमाल की इस फिल्म के गाने, कमाल के इस फिल्म के किरदार और कहानी भी। केवल 3 महीने में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म में एक सीन भी है जहाँ अमिताभ बच्चन साहब एक बाघिन से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताते हैं कि बड़ा कमाल का रिश्ता इन दोनों के बीच में सेट के दौरान, शूटिंग के दौरान भी बन गया था। वो बाघिन जिसका नाम भारती था और वो एक ट्रेंड ब्रीड की बाघिन थी। और जब बच्चन साहब सेट पर हुआ करते थे उसके साथ, जब केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, तो इतना ज़्यादा वो लोग घुल मिल गए थे कि बाघिन जो थी वो जब तक बच्चन साहब सेट पर आकर अपना खाना शुरू नहीं करते थे तब तक वो भी खाना नहीं खाती थी, इतना मेलजोल बढ़ गया था। इसी तरह से फिल्में बनती हैं। 3 महीने में ये फिल्म बनी और कमाल की इस फिल्म के गाने जो आज भी लोगों को पसंद आते हैं। राजेश रोशन साहब को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुपर संडे वाली महफिल में अगला गीत आपको सुनाते हैं, क्योंकि आज भारत में, इंडिया में फ्रेंडशिप डे भी है, दोस्ती का दिन भी है, तो आपको एक दोस्ती का गाना सुनाते हैं। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127 रुपीज़ 65 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Like a Gold.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: London walo dhyan se sun lo ke furniture ki dhamakedar flash sale aa gayi hai. Shandar Italian aur German design wale bedroom aur dining furniture par bhari chhoot ka fayda uthaiye. Gaddon aur almariyon par zabardast katauti, sabhi divan sets ke sath bilkul muft headboard, sabhi saman tatkal delivery ke liye dastiyab hain. Jaldi kijiye, ye flash sale somvar sham 6 baje khatam ho jayegi. Aaj hi hamare Hero Picklewood और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
7: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
6: डेजर्ट सफारी,
7: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
6: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
7: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02 0239 9763-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: High Appreciation
12: in Dubai.
13: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24-hour line.
14: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at quality food stores.
15: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
16: बीकानेर वाला परंपरा भी
17: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779518100
18: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
19: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
20: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
21: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Suresh Vadkar aur Anwar sahab ki awaaz thi, Vidhata film ka ek gaana sun rahe the aur badi kamaal ki chemistry dikhai gayi hai Dilip sahab aur शम्मी कपूर साहब के बीच में. जब भी मिलते हैं और जब मुलाकात होती है और गाना गाते हुए दिलीप साहब कार से उतर कर एक अलग से अंदाज में बड़े ही खुश, ये दोनों ही चेहरे बड़ा सुकून देते हैं उस दौर की फिल्मों का. वैसे दोस्ती की बात चल रही है, आज फ्रेंडशिप डे का दिन भी है, तो आज हम गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस दोस्ती पर ही रखने वाले हैं. उसके लिए तलाश जारी है, लेकिन इससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है ना तो फिर उसे सब कुछ आता है. मतलब कि इस दुनिया में सिर्फ दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो एकदम प्योर है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, और वो दोस्त हर वक्त आपके साथ होता है, जब आपका वो बुरा वक्त हो या फिर अच्छा. तो चलिए आज अच्छा अच्छा सुनते हैं और अच्छे अच्छे गाने भी आपको सुनाते हैं. अगला गीत थोड़ा सा रोमांटिक, लता जी और मुकेश साहब की आवाज में, फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र.
0: On Rag with Golden Rag.

0: अगर हमारा फूल आप तक पहुंच गया हो तो अब अगला गाना उन लोगों के लिए है जो ड्राइव पर निकले हुए हैं, और इस गर्मी में आपको बस यही सलाह है कि थोड़ी थोड़ी सी विंडो अपनी खोलिए, हम यहाँ से आपके लिए ठंडी ठंडी पवन भेज रहे हैं। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: मैं हूं अश्विनी, हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: क्या बात है लता जी की इस खूबसूरत आवाज में, बेमिसाल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। एक बार दो दिग्गज एक प्लेटफॉर्म पर यानी कि एक मंच पर थे और वो दिग्गज थे लता जी और दिलीप कुमार साहब। जहां दिलीप साहब लता जी का इस्तकबाल कर रहे थे, उन्हें इनवाइट कर रहे थे मंच पर, उस स्टेज पर, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन कही थी कि मल्लिकाए तरन्नुम, देश की आवाज, दिल की आवाज, इनकी आवाज सदियों तक इस जहां में लहराती रहेगी। और बिल्कुल सही बात थी उन दोनों ही लेजेंड्स की के बीच जो हुई थी। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये फ़र्क और ये जो सलाह थी जो दिलीप साहब ने उस वक्त हम सब से कही थी अपने इंटरव्यू के माध्यम से, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि लता जी की आवाज़ जब भी आप सुने, किसी भी मूड में सुने, तो आपके दिल तक पहुँचती ज़रूर है। अगला गीत किशोर दा और एक बार फिर से लता जी की आवाज में, सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.

0: beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
1: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627।
2: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन। Cool music for a super hot summertime on Like a Gold.

0: किशोर दा और लता जी की आवाज में राजा रानी फिल्म का ये गीत। आर डी बर्मन साहब का इस फिल्म में था संगीत और काका यानी कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे। कमाल की उनकी जोड़ी से किसी से छुपी नहीं है, कमाल की केमिस्ट्री, चाहे वो पहली फिल्म हो या तमाम फिल्में। अगले गाने के बाद, अगले गीत के बाद आपको जलानी होगी अपने दिमाग की बत्ती, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं, आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में मिल रहे हैं आपको 128.64 पाकिस्तानी रुपीस, 374.57 श्रीलंकन रुपीस, 452.5 बांग्लादेशी टका, 166.84 एंड 1 US डॉलर 1.34।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: Aap sun rahi hai Golden Rag, Anurag ke saath.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £96.48 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: मुन्ना भाई मोहम्मद अजीज, नितिन, मुकेश और अनुराधा पौडवाल जी की आवाजों में राम लखन फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया सुमित पंकज और रजनीश जी ने, सुमन जी ने भी, माफ कीजिएगा, चार लोगों की तरफ से ये गाना हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला गाना हमने आपको गोल्डन राग की तरह सुनाया, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था नाम क्या है, और आज का गोल्डन वर्ड भी नाम ही है। बहुत सारे गीत हम तक पहुंच चुके हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, इनफैक्ट यही कहना चाहिए। तो बिना वक्त गवाए हमने नाम ले लिया है किसने इस गाने को हम तक पहुंचाया था। फिल्म राम लखन से, कमाल की फिल्म थी, और यादें ताज़ा हो जाती हैं 80s के दौर के उस सिनेमा से जुड़ी, जब इस तरह का क्राफ्ट पेश किया जाता था, मस्ती भी होती थी, इंटरटेनमेंट भी होता था, इमोशंस भी होते थे। जहाँ पर इस फिल्म में एक माधुरी जी का गाना है, ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा ही प्यारा गीत फिल्म में आ गया है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे और दिमाग की बत्ती जलाते रहिए हम तक, अपने फरमाइश के पिटारे से निकाल कर नाम वाले गाने भिजवाते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन करेंसी में 127 रुपीज एंड 65 पैसे। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय धुरंधर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
3: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर ऑन उत्सव गोल्ड 15th एंड 16th ऑफ अगस्त एट 9 PM। Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
8: Shaam chalne lage.
7: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Bharatiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday, the 8th of August. From 3 PM, experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421497541. Radio partners, Leica Radio Network.
12: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
3: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs apply.
5: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagoon.com. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Mukesh, aapki awaaz mein bada hi khoobsurat gaana Jis Desh Mein Ganga Behti Hai. 1960 mein ye film aayi thi aur film ka sangeet diya tha शंकर जयकिशन साहब ने और शैलेंद्र हजरत जयपुरी साहब ने फिल्म के गानों को लिखा था और ये गीत प्यारा सा गीत हम तक पहुंचा है विजय गोदारे सटन से और संतोष जी ने बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस गीत के लिए अगला गाना मोस्ट डिमांडिंग गाना आने वाला है भाई सुनिए मिस मत करिएगा
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ On Rag with Golden Rag.
3: Tasty track Tasty of the track hour. Of the
4: brought
3: hour.
4: To you by
3: sponsored
4: Coca
3: by
4: Noodles.
3: Coca Noodles is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty.

0: लता जी और भूपेंद्र सिंह साहब की आवाज में घूस बम आने वाला ये गीत किनारा फिल्म का था और इस फिल्म का संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया पहले से कह रहा हूँ आप सभी का इस गीत के लिए। अगर आप लोग इस गाने को नहीं भेजते ये गाना फिर भी इस लिस्ट में आज की थीम को मद्देनजर रखते हुए शुमार जरूर होता। संध्या भावसर जी, उल्लास जी, विजय गुनोवा जी, के भामरा जी, अमित पटेल जी, सपना जी फ्रॉम अक्स ब्रिज और सोमिला मुंगुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए।
1: On Rag with Golden Rag. Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
0: तो प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग भी कहीं घूमने जाने के लिए, साउथ ओल्ड ट्रेवल है बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। और कॉल कर सकते हैं साउथ ओल्ड ट्रेवल को मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स के लिए। नंबर है 02085748410, अटोल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Extra Podcast Update.
0: Leica Extra Podcast Update, podcast episode number 27. Title Honor Based Abuse, hosted by Deep Raja and Khush. याद रखिए लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका गोल्ड।
2: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल today.
6: Dad,
7: what's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Start

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए बोल और उस पर कह ढाती रफी साहब की आवाज। सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत सबसे मशहूर गीत था उस दौर का, और संजीव कुमार साहब का इस फिल्म में अलग अंदाज भी नजर आया था, क्योंकि आमतौर पर उन्हें गंभीर ट्रेजेडी सीन्स के साथ ज्यादा रिलेट किया जा सकता था, लेकिन इस फिल्म में खासतौर पर जो कि पारंपरिक एक फैंटेसी हीरो के रूप में खूब सारा एक्शन और मिरेकल और मैजिकल सीनों से भरमार ये फिल्म, कमाल का इस फिल्म का ये गाना जो हमने आपको सुनाया। और बहुत बहुत शुक्रिया भरत गंगाराम जी जिन्होंने इस गाने को हम तक पहुंचाया, और साथ में हैं सूरज जी, आपने अपनी फिल्म का नाम आपका नाम भी फिल्म के टाइटल में शुमार होता है, सूरज और चंदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.58 पाकिस्तानी रुपीस 374.1549 श्रीलंकन रुपीस 452.4 बांग्लादेशी टका 166.8 अफगान अफगानी 88.87 एंड 1 US डॉलर 1.34.
2: Like Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £96.48 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.

0: मुकेश साहब की आवाज में छलिया फिल्म का छलिया मेरा नाम ये गीत हम तक पहुंचाया है सरफून जी, बहादत और प्रेम पटेल जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। और अगला जो गीत आने वाला है, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने रेडियो के करियर में सिर्फ दो बार इस गीत को प्ले किया है और दूसरी बार आज का दिन होगा। बड़ी हिम्मत चाहिए इस गाने को प्ले करने के लिए और सुनने के लिए भी। और ये गाना हम तक पहुंचाया है टोची पनेसर जी और राज पटेल साहब ने आज की थीम को मद्देनजर रखते हुए। याद रखिए, अगला घंटा दिमाग की बत्ती नहीं, दिल की बत्ती जलेगी। हम आपको देंगे गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। फिलहाल एडवर्ड के बाद ये गाना एंजॉय करें।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी। खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।
2: खतरों के खिलाड़ी।
3: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
4: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
4: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
4: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
3: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
4: टू बुक कॉल आवर लंदन office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
6: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
7: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
6: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
9: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.8% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
13: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
14: बीकानेर वाला परंपरा भी,
15: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA, कॉल 07555-506015।
16: फ्रॉम ब्रेथ टेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स, डू कम इन एंड सी अस एट मीनार ज्वेलर्स टू क्रिएट द परफेक्ट सिंबल ऑफ योर लव स्टोरी। मीनार ज्वेलर्स, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
17: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
18: On RUG.

0: लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्योंकि हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। पहले जल्दी से बताते हैं कायदे प्लस कानून। हम आपको बताएंगे तीन ऑप्शन जो कि गानों के होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है और दिमाग की बत्ती जलानी है, माफ कीजिएगा दिल की बत्ती जलानी है, और हम तक वो ऑप्शन वोट की तरह कास्ट करना है। जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना बनेगा आज का विजेता, यानी कि आज का गोल्डन राग। तो चलिए जल्दी से हम आपको बताते हैं आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस जो कि हैं मित्रता दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे पर आधारित, तीनों दोस्ती से लबरेज ये गीत और कमाल के। तो पेशे खिदमत है आपके लिए ऑप्शन ए, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, फिल्म का नाम है भी है दोस्ताना। ऑप्शन बी है ए यार सुन यारी तेरी, फिल्म का नाम है सुहाग। और ऑप्शन सी है मेरी दोस्ती मेरा प्यार, फिल्म का नाम है दोस्ती। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है सलामत रहे दोस्ताना हमारा, फिल्म का नाम है दोस्ताना। ऑप्शन बी है ए यार सुन यारी तेरी, फिल्म का नाम है सुहाग। और ऑप्शन सी है मेरी दोस्ती मेरा प्यार, फिल्म का नाम है दोस्ती। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.65 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold. Laika
3: Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Bhartiya Vidya Bhavan proudly presents the Summer Showcase 2026 at the iconic Harrow School on Saturday the 8th of August from 3 PM. Experience an unforgettable celebration of Indian classical music, dance and culture. Seats are limited, so book now at ticketsource.com/Bhavan. For details, visit bhavan.net or call or WhatsApp 07421 497541. Radio partners, Leica Radio Network.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02023935757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
13: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
14: Be part of a historic grand opening.
15: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
14: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
15: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
14: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208767-7627।
17: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
18: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक यशुदास साहब की आवाज में सुन रहे थे आप स्वामी फिल्म का ये खूबसूरत इमोशनल नगमा। और एक बार फिर से आपको बता दें, आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शन जिनमें से आपको एक चुनना है और वोटिंग लाइन अभी तक हैं ओपन। तो ऑप्शन ए है सलामत रहे दोस्ताना, हमारा सारे दोस्ती के सॉन्ग है भाई, फिल्म का नाम भी है दोस्ताना। ऑप्शन बी है ए यार सुन यारी तेरी, फिल्म का नाम है सुहाग। और ऑप्शन सी है मेरी दोस्ती मेरा प्यार, फिल्म का नाम है दोस्ती। याद रखें वोटिंग लाइन जब तक ओपन है हम आपके वोट्स रिसीव करते रहेंगे अपने भारी बहुमतों से साथ। आप अपने गाने को विजयी बनाएं। अगला गाना लता जी किशोर साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम है गाइड, देव साहब के दीवानों के लिए गाना।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lata ji, Kishore da ki awaaz mein sada bahar geet, guide film ka ye nagma. Babu ji, aapko bahut pasand aaya, chaliye aapke naam ye geet. लेकिन याद रखें, बाकी सारे श्रोता आज दोस्ती का दिन है, दोस्ती निभाइए और अपने अपने वोट कास्ट करते जाइए।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: लाइक अ रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू टीम अप विद भारतीय विद्या भवन फॉर द समर शोकेस 2026 एट हैरो स्कूल और एक्सपीरियंस कीजिए आप रिचनेस ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट एंड कल्चर। ना भूल पाने वाला सेलिब्रेशन, म्यूजिक, डांस, मस्ती, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, सब कुछ होगा सैटरडे 8th of August फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स। टिकट्स अवेलेबल हैं ticketsource.com/bhavan और कॉल कर सकते हैं आप, नंबर है 07421497541।
0: On Rock with Golden Rock.

लता जी और मुकेश साहब की आवाज में अनारी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत जितनी सादगी के साथ इसे गाया गया है उतनी सादगी के साथ इसे पर्दे पर

0: किशोर दा की आवाज में सफर फिल्म का ये गीत सुनने के साथ ही साथ वोटिंग करने वालों का सफर यहाँ खत्म हो चुका है, क्योंकि चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं दोस्ती के दिन क्या मिल रहा है आपको सरप्राइज।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.58 पाकिस्तानी रुपीस, 374.39 श्रीलंकन रुपीस, 452.36 बांग्लादेशी टका, 166.82 अफगान अफगानी, 88.87 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £96.48 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे सारे श्रोता जो लिसनर्स हैं जो हमें सुनते हैं वो सिर्फ म्यूजिक के शौकीन ही नहीं समझदार भी हैं म्यूजिक के। दूसरी फिल्म का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी साहब की आत्मा से लिखे हुए ये गीत जल्दी से लेते हैं। नाम सपना जी एक्सप्रेस से रानी सुना है किरण प्रीति सचिता चंदन सविता विजय जी निर्मला जी रंजना कुकाडिया हंसा मिस्त्री किरण जी रमिला पटेल सईद इकबाल भारती जी बॉबी जी मनोहर जी और अर्जन जी मिसेज इकबाल बेगम बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गीत को चुनने के लिए। एक बार फिर से दिल से दोस्ती वाली दुआ आपके लिए। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी अच्छे अच्छे गीत आपको सुनाने के लिए। मेरा वक्त हो रहा है आपसे अलविदा कहने का। अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। टेक केयर बाय बाय खुश रहें मस्त रहें।
1: ये है Like a Gold। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी। खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।
2: खतरों के खिलाड़ी
1: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
3: लोकेशन
4: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
4: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Dreaming of paradise?
6: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
5: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
6: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
5: At all protected.
7: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
8: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure Herbal Care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
7: So where do we find something like that now?
8: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, Premium and made it the way our eldest used it.
9: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
11: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
12: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
14: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
15: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
16: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: गुड आफ्टरनून। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, ज़बरदस्त गाने थे। पहला गीत था मैंने प्यार किया फिल्म से, और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म यूथ 1985 की फिल्म थी। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने इन्जॉय किए। और आज सबसे पहले आपको मैं विश करना चाहूँगी हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। हमारी भी तो दोस्ती है ना आपस में, है ना, ऐसा ही है कुछ। ज़रा अपने दोस्तों से जान लूँ कैसे मिजाज है आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। बाई एनी चांस इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल तो गेट वेल सून, इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन चीयर अप, मैं हूँ ना आपके साथ और आपका साथ हमेशा निभाऊंगी जब तक जिंदगी ने साथ दिया। और आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, जिसे हम इजी शब्दों में कहें तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। दोस्ती क्या है आपके लिए? दोस्ती क्या है? दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो ना खून से जुड़ा होता है, ना किसी मजबूरी से जुड़ा होता है। ये रिश्ता दिल से बनता है, विश्वास से मजबूत होता है और ज़िंदगी के हर सफ़र को खूबसूरत बना देता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी मुस्कान की वजह भी बन सके। जी हाँ, आपको आपके चेहरे पर रौनक ला सके, आपके चेहरे पर मुस्कान ला सके, आपके आंसुओं की वजह कभी ना बनने दे और हमेशा आपको खुश देखना चाहे, वही सच्चा फ्रेंड होता है, सच्चा दोस्त होता है, जो बिना कहे आपकी बातें समझ जाए और हर मुश्किल में आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाए, वो होता है सच्चा दोस्त। आज का दिन उन सभी दोस्तों को समर्पित करती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, यादों और अपनापन हमें दिया है, हमारी ज़िंदगी को अपनेपन से भर दिया है। अगर आज तक आपने अपने किसी दोस्त से दिल की बात नहीं कही तो आज ही उन्हें एक फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज दें, एक संदेश भेज दें और बस इतना कह दीजिए, दोस्त मेरी ज़िंदगी में होने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो। हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, वी अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं इंडिया में तो फिर याद रखिएगा, किसे आप याद रखें? SBI योनो वालों को, SBI बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। यो वन ब्रिटिश पाउंड आज आपको दिला सकते हैं 127 रुपीज़ एंड 65 पैसास। सो आपने ट्रांसफ़र कैसे करने ये भी जान लीजिएगा। यू कैन एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसके ज़रिए घर बैठे ही पैसे ट्रांसफ़र करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: मेरे सभी साथी जो मैसेजेस ऑलरेडी भेज चुके हैं और भेजते जा रहे हैं, उन सबको पता चल चुका है कि आज के गीतों के में क्या वर्ड कॉमन है। सो आपको पता तो चल ही गया है, दोस्त या दोस्ती या दोस्तों। एंड अगर आपको कोई ख़ास गीत याद आ रहा है और आप चाहते हैं प्रोग्राम में शामिल हो तो मुझे बता सकते हैं, लेकिन दो गीत मैं बता दूं कि ये मैं नहीं प्ले कर पाऊँगी। एक मेरी दोस्ती मेरा प्यार, क्योंकि अनुराग जी ने अपने प्रोग्राम में ये गीत अभी सुनाया था आपको कुछ देर पहले ही, एंड दूसरा गीत भी आपने कल ही के प्रोग्राम में यहाँ सुना और वो गीत फ्रॉम द फिल्म शोले, जो कि ज़बरदस्त दो गाने थे। पर कोई बात नहीं, और भी बहुत से अच्छे अच्छे गीत हैं जो मैं प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपकी कोई ख़ास पसंद है तो जल्दी से लिख कर भेज दीजिएगा।
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega Blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
2: London walo dhyan se sun lo ki furniture ki dhamakedar flash sale aa gayi hai. Shandar Italian aur German design wale bedroom aur dining furniture par bhari chhoot ka fayda uthaiye. Gaddon aur almariyon par zabardast katauti, sabhi diwan sets ke sath bilkul muft headboard, sabhi saman tatkal delivery ke liye dastiyab hain. Jaldi kijiye, ye flash sale somvar sham 6 baje khatam ho jayegi. Aaj hi hamare Hero, Picklewood aur Slow ke showrooms mein aaiye ya phir keyfurniture.co.uk par jaye.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
1: Southall Travel, at all protected.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
9: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
3: sonajewelers.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027 बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट 600 ऑफ और लूज द डिस्काउंट कॉल सोना ज्वेलर्स नाउ ऑन 0208-951-0111
4: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गीत आपने सुन लिया और इस गीत की फरमाइश भी मुझ तक पहुंची थी. थैंक यू सो मच महेंद्र बरजारिया जी, मनु जी, सपना जी, भारती जी, दिव्या जी. आप सबने इस गीत के को सुनना भी चाहा था. सुदेश तकियार जी, रोशनी जी, मनु महेंद्र जी, उल्लास जी, अमित पटेल, हना, फरजाना, आप सबके मैसेजेस मिल चुके हैं ऑलरेडी. भारत गंगाराम जी, संतोष जी, जगदीश जी फ्रॉम बुशी, सहर्ष जी, प्रतिभा एंड दिनेश पोपट जी, अर्जुन जी. ओ माय गॉड, लिस्ट बहुत लंबी है. हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे. और अगला गीत कोका नूडल्स वालों की जानिब से आप तक पहुंच रहा है.
0: लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
2: भी कभी कभी दोस्तों में थोड़ी सी गलत फहमियाँ हो जाती हैं, तो मैं यही कहूँगी अगर किसी दोस्त के साथ कोई गलत फहमी हो जाए तो जल्दी से फ़ोन उठाकर उनसे माफ़ी मांग लें. या कहते हैं ना, क्लियर द एयर, तो दिल साफ कर लें उनका भी और अपना भी. बहुत प्यारा गीत आपके नाम.

0: इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाने हैं, इन गीतों को हम चेरिश करते हैं हमेशा। और इसी गीत के दौरान मुझे विजय घनोवा जी ने बहुत प्यारा एक मैसेज भेजा, लिखते हैं, दोस्ती को मत आजमाओ दोस्तों, दोस्ती को मत आजमाओ दोस्तों, दोस्त वो है जो बारिश में दोस्त के भीगे चेहरे से आंसू पहचान लेते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और देशराज जी आपने लिखकर भेजा है कि तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे वो मित्र है, तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सरोवर कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संपत्त चित को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके सारे परिवार को, सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत बधाई। तो मैं भी सिंपल हिंदी में यही कहूँगी कि दोस्ती कोई लफ्ज़ नहीं एक एहसास है, दोस्ती कोई लफ्ज़ नहीं एक एहसास है जो हर खुशी में साथ और हर गम में विश्वास है, रिश्तों की भीड़ में जो दिल को सुकून दे वही दोस्त जिंदगी का सबसे खूबसूरत उपहार है। और ये गीत फ्रॉम द फिल्म संगम आप तक पहुंचाया।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
3: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779518100।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply.
5: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
6: When your husband's got his heart set on making the doer-upper open plan, enjoy every thudding second of it.
7: Yes!
6: Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: Look, there's a snail. And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
10: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
9: Conditions apply. See online for details.
11: Budget tight, पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
12: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: भाई दोस्ती में ऐसा होता ही है ना, कभी कभी हम नोकझोंक करते हैं तो वो लगता है कभी दुश्मनी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ये प्यार ही होता है जो इस तरह की नोकझोंक पर उतर आता है। बहुत से प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मिस शेख आप भी सुन रही हैं, तोशी जी आपका भी बहुत प्यारा मैसेज मुझे मिला है, सोहिनी रावल जी थैंक यू एवर सो मच आपके प्यार के लिए भी, संध्या भाव सर, भारती डी जी, विमल रायन जी, भारती जी, फरजाना जी, हरीश रुड्डा जी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: अ पाउंड इन योर पॉकेट कैन गेट यू इंडियन रुपीस 128.62, पाकिस्तानी रुपीस 373.80, श्रीलंकन रुपीस 452.51, बांग्लादेशी टका 166.89 एंड यूएस डॉलर्स 1.34।
1: लाइका रेडियो। Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate hai is waqt £96.48 ka 1 gram sona.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: और इंटरनेशनल दोस्ती के दिन पर फ्रेंडशिप डे पर आज के प्रोग्राम के सावर में आपने कुछ ऐसे गीत सुने जिसमें दोस्तों का जिक्र था। उम्मीद करती हूँ सारे गीत पसंद आए, लेकिन आज के प्रोग्राम के इस सावर का अगला गीत जो आप कमर्शियल्स के बाद सुनेंगे वो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, एंड आई लव दैट फिल्म, एंड द फिल्म वॉज कॉल्ड मेहरबान। सुनील दत्त, अशोक कुमार थे इस फिल्म में एंड नूतन। सोचते रहें कौन सा गीत है, आ रहा है कुछ ही देर में।
4: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी। खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।

0: जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. दो गाने आपने बैक टू बैक सुने, एक था फिल्म खुद गर्सी और दूसरा गीत जिसने प्रोग्राम के शुरू में यानी कि इस आवर के ओपनिंग की, वो गीत था फ्रॉम द फिल्म नरसिम्हा से. 1991 की फिल्म थी एंड हीरोइन थी इस फिल्म की उर्मिला मातोंडकर. सो बहुत प्यारी विवेक मिश्रा थी. नाउ अतुल अग्निहोत्री, आई एम नॉट टू श्योर हु वॉज द मेल इन दिस फिल्म, पर मैंने देखी है एंड इसमें सनी देओल भी थे, डिम्पल कपाडिया भी थे. मैंने देखी हुई है फिल्म लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो न्यू कमर कौन थे जो उर्मिला मातोंडकर के साथ, विवेक मिश्रा थे या अतुल संबडी. एनीवे आपको याद हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं. सो आज ख़ास दिन है तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं हम. तो पिछले आवर में दोस्ती की बात हुई, दोस्तों की बात हुई और इस आवर में भी मैंने सोचा कुछ एक गाने रह गए तो वो भी प्रोग्राम में शामिल हो जाने चाहिए. तो दोस्तों के नाम बहुत ही प्यारी से दो गीत मैंने आप तक पहुंचाए. वैसे आपकी नज़र में क्या दोस्ती क्या है? दोस्ती कोई रिश्ता तो होता नहीं है. दोस्ती कोई रिश्ता नहीं, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत एक आदत है. डू यू थिंक सो? वो जो भीड़ में भी आपकी खामोशी सुन ले और मुस्कान के पीछे छिपी थकान पढ़ ले, वो तो दोस्ती होता है ना, होता है ना. कभी धूप में ठंडी छांव बन जाता है तो कभी अंधेरे रास्तों में उम्मीद का छोटा सा दिया. कुछ दोस्त रोज नहीं मिलते हैं, होते हैं ना, सालों तक हम नहीं मिलते हैं कुछ दोस्तों को. कुछ दोस्त रोज़ नहीं मिलते फिर भी हर रोज़ याद आते हैं. कुछ बातें कभी नहीं होती, कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं कही जाती हैं फिर भी दिल तक पहुंच जाती है, और जिसके दिल तक पहुंचती है वो दोस्ती होता है. दोस्ती की उम्र सालों से नहीं एहसासों से मापी जाती है. जहाँ अपनापन हो, भरोसा हो और बिना किसी शर्त के साथ निभाने का वादा हो, वो कौन होता है? दोस्त. वहीं से शुरू होती है दोस्ती की सबसे खूबसूरत कहानी. उम्मीद करती हूँ कि दोनों गीत आपने पसंद किए. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक दो गीत और हो जाएंगे यारों पर या फिर दोस्ती पर, चलिए देखते हैं. और बहुत से मेरे साथी अभी अभी जुड़े हैं, उन सब का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी. आप तक मैसेजेस मैंने पहुँचा दिए हैं एंड आप मुस्कुरा दीजिए कि आप मेरे साथ हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं. एक नया नाम सामने आया, मेरा नाम आर्या है एंड बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है. हाँ, रवि बहाई थे उस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर के साथ. वॉज इट रवि बहल थे, नॉट बहाई. यह रवि बहल थे. यस यस आई रिमेंबर. और आप हैं कौन? नया नाम आर्या जी, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी. सो अब चलिए आगे बढ़ लें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी अगर SBI UK के जरिए आप पैसे पहुंचाना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बड़ा आसान है. You can exchange in branch में जाकर online और SBI Yono mobile app अगर आपने download किया उसके ज़रिए कहीं भी भेज सकते हैं. और आज आपको एक pound के बदले मिल सकते हैं कितने? 127 rupees and 65 paisas. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Celebrate 140 years of innovation at the Mercedes-Benz Platinum Star event from the 6th to the 10th of August. Whether you're considering electric or combustion, unlock exclusive in-store savings across the range. And that's on top of our existing offers, like the A200 AMG Line Executive Hatchback, now available from £299 a month. Book your appointment at your local showroom today. PCH offer ends 30th of September. Advance rental £7,411, 4-year lease, subject to status and availability. T's and C's apply. Mercedes-Benz Finance.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a gold. This part of the show is brought to you by Durandar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
5: साउथहॉल ट्रेवल at all protected.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.8% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3-year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये गीत बहुत प्यारा था और आपको पसंद भी आए अजिनिक के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. सुन रहे हैं प्रोग्राम फरसाना, आप भी पहुंच चुकी हैं, तोची जी आप भी पहुंच चुके हैं एंड भारती डीडी आपने भी मैसेज लिख के भेजा, थैंक यू आपका. और संतोष जी आपका मैसेज मिला और आपने कहा है कि कुड यू प्लीज़ प्ले द फॉलोइंग सॉन्ग एज इट्स माई बर्थडे टूडे 2nd August. The song is जिंदगी सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. Well, आपके जन्मदिन के मौके पर yes, ये गाना happy नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपकी अगर पसंद है yes, अगले पल का भी किसी को कोई भरोसा नहीं होता है. पर हमारी यही wishes रहेंगी आपके साथ कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और बहुत लंबी एंड बहुत हेल्दी लाइफ रहे आपकी. आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी ऑन योर बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट विशेस. और तोहफे में आ रहा है यस, आपका मनपसंद गीत है, तो सरिता कैसे मना कर सकती है.
0: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक अ गर्ल.
2: और जिन्हें भी किशोरदा की आवाज़ बहुत पसंद है उन सब के नाम भी करते हैं इस गीत को. जिन्हें राजेश खन्ना बहुत पसंद थे उनके नाम भी ये गाना.

0: सुपर डुपर हिट फिल्म और हिट गाना आपने सुना, बहुत खूबसूरत था, फ्रॉम द फिल्म अंदाज. एंड संतोष जी, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली. और हमारी सारी फैमिली यानी लाइक रेडियो नेटवर्क के जरिए भी हम आपको बेस्ट विशेस भेज रहे हैं.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Leica Gold. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Leica Extra Podcast Update.
0: Right, we episode 27 is out now. Honor-based abuse. Deep Raja and Kush are the hosts for this program. This intense episode uncovers the harsh reality of honor-based abuse in our desi communities. So, अगर आपने अभी तक कोई भी episode नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं. Like Extra podcast is available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Like Extra. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: It's official. Tesco Pet Insurance is the dogs, biscuits. At Tesco, we love pets, and we've been awarded a Which Best Buy for all our lifetime dog and cat policies with over £5,000 cover. We offer a range of different policies and cover levels, so your cat

0: 8022 8883 or visit travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।

0: क्या बात है, मेरे सनम से चुना था इस गीत को। और गीत के दौरान संतोष जी आपका भी मैसेज मिला, विभाकर स्टैनमोर में आप सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जानकर अच्छा लगा। सपना जी अक्सब्रिज से आपने भी मैसेज भेजा है, एंड विमल रायन जी सुन रही हैं, संध्या जी आप भी सुन रहे हैं। हितेश जी के लिए बेस्ट विशेज। और अब जरा जल्दी से ये काम कर लें।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.58, Pakistani rupees 373.70, Sri Lankan rupees 452.39, Bangladeshi taka 166.86 and US dollars 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: 96 pounds and 48 pence ka 1 gram sona mil raha hai is waqt.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, बहुत प्यारे गीत थे और दोनों ही मेरे पसंदीदा गीत थे। विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में पहला गीत फिल्म जीत से चुना था, 1996 की फिल्म थी। एंड ये फिल्म जीत मैंने क्यों चुना, वेल जीत नाम से कितनी फिल्में आपको याद हैं कि जीत नाम से फिल्में आई थी। आई रिमेम्बर एक फिल्म थी 1949 में आई थी, एक फिल्म थी जो 1972 में आई थी जीत, और ये जो गीत मैंने चुना ये था 1996 की फिल्म जीत से गाना। इस फिल्म के आर्टिस्ट कौन थे याद है आपको? जीत राज कंवर जी ने बनाई थी ये मुझे याद है। साजिद नाटियावाला ने उसे प्रोड्यूस किया था एंड इस फिल्म में काम किया था सनी देओल ने, सलमान खान ने, करिश्मा कपूर थी एंड अमरीश पुरी भी थे। फिल्म का संगीत बड़ा ज़बरदस्त था, सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे एंड इस फिल्म के सभी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। एंड वो गाना ख़ास तौर पर अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, वो गाना मुझे बेहद पसंद है। ये फिल्म अगस्त के महीने में ही रिलीज़ हुई, हो सकता है 23 को मेरा शो होगा, यस इट्स संडे आई थिंक, सो आई विल बी प्लेइंग अनदर सॉन्ग फ्रॉम दिस फिल्म। सो आज हवस फिल्म रिलीज़ हुई थी आज के दिन, तो हवस का एक गाना मैंने क्यों किया है आप तक पहुँचाऊँगी ज़रूर। लेकिन जीत की बात हो रही है तो ये जीत 1996 में आई थी एंड बहुत पसंद किए गए थे इसके गाने जैसे कि मैंने बताया। एंड संगीत नदीम श्रवण का था, समीर जी ने लिखे थे सारे के सारे गाने, और बेस्ट एक्टर अवार्ड के नॉमिनेशन मिली थी इस फिल्म के लिए सनी देओल को। एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सलमान खान वाज नॉमिनेटेड टू, एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तबू वाज नॉमिनेटेड टू। सो ये थी इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी, अगर फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, गाने बड़े ज़बरदस्त हैं। मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन गाने सारे देखे हुए हैं वीडियो पर, सो मुझे पसंद है वैसे भी सारे के सारे गाने। सो अब इस नाम से एक और फिल्म बनी थी जीत जो आई थी 1972 में, उसका गीत मैंने क्यों किया है लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा वाला गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ। उसका गीत था एक शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूँ, लता जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत, और दूसरा था चल प्रेम नगर, लता जी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। कौन सा गीत आपके दिल के करीब है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। मीनवाइल मैं दूसरे काम कर लेती हूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए अगर आप पैसे इंडिया भिजवाना चाहते हैं कहीं भी तो 1 British sterling pound can get you up to 127 rupees and 65 paisas today. You can go to the branch, online जा सकते हैं या SBI YONO mobile app के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। TNC applies.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और भाई सरिता कंफ्यूज रहती है, थोड़ी सी कंफ्यूज नहीं रहती, मुझे पता नहीं चलता कौन सा गाना छोड़ दूं कौन सा गाना प्ले करूं। तो यासुदेस इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं और उनके भी दो गीत हैं, एक है चितचोर से तू जो मेरे सुर में, वो गीत भी बहुत खूबसूरत है, और दूसरा है दुल्हन वही जो पिया मन भाई, उसका गीत है खुशियां ही खुशियां। तो आपको इन दोनों में से कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है ये भी बता दीजिएगा, देर मत कीजिए।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Celebrate 140 years of innovation at the Mercedes-Benz Platinum Star event from the 6th to the 10th of August. Whether you're considering electric or combustion, unlock exclusive in-store savings across the range. And that's on top of our existing offers, like the A200 AMG Line Executive Hatchback, now available from £299 a month. Book your appointment at your local showroom today. PCH offer ends 30th of September. Advance rental £7,411. 4-year lease. Subject to status and availability. T's and C's apply. Mercedes-Benz Finance.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day, we're at our peak. Safal Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Safal Travel, Atal Protected.
7: Watford mein dinner plans, thoda classy, thoda desi.
8: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
7: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
8: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923 227274. Book your table today.
9: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
9: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
9: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
9: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Start to

0: book now. Visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 hour line.
2: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy three nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another three nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
3: Honslow, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
4: Bikaner wala parampara bhi.
5: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
6: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
9: Laika Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: यशुदास एंड हेमलता की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई। और इस हफ्ते हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रहे KJ यशुदास जी। सो मेनी टाइम्स ही रिसीव्ड नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड कितने ही अवार्ड्स मिले, लेकिन जनता का अवार्ड सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आई होप यू लाइक द सॉन्ग, और जिन्होंने वोट दिया इस गाने के लिए थैंक यू।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फिल्म का नाम था जीत, 1972 में आई थी ये फिल्म, हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म, रिलीज इन 1972, स्टारिंग संजीव कुमार। क्राइम ड्रामा में डायरेक्ट किया था इस फिल्म को एंड प्रोड्यूस किया था अद्रुति सुबा राव ने, और इट वाज अ रीमेक ऑफ हिज ओन 1967 तेलुगु फिल्म पूला रंगाटू। उम्मीद करती हूँ गीत पसंद आया और आप तक पहुँचाया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai Laika Gold.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ साउथ होल ट्रैवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई। कॉल साउथ होल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड। और मुझे
3: बासमती राइस, टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा।
0: इस गीत की रिक्वेस्ट मिली थी, किसने भेजा था, खुश हो जाएं।

0: वाह वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और ये गीत हम करते हैं सुरेता के नाम, जो कि मॉरिशस से आई हुई हैं अपने भाई किरण के घर में. और किरण जी, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए. और आपने कहा कि आप सभी मिलकर सुन रहे हैं प्रोग्राम, इंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह से इंजॉय करते रहिए. मेरे बाद आ रहे हैं सुप्रतिम, जो सैंडी शाह की जगह आप तक विंटेज गोल्ड प्रोग्राम पहुँचाएंगे. मेरा और आपका साथ आज के दिन बस यहीं तक था. जिन मेरे साथियों ने बड़े प्यार से पिछले 3 घंटे में पता नहीं कितने सारे मैसेजेस भेजे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. हर गीत के बाद आपने मुझे एहसास दिलाया कि ये गीत आपके दिल के करीब है, आपको बहुत पसंद आया. और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पर आपने कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखकर भेजे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. एंड अभी तक आपके मैसेज, रिपीटेड मैसेजेस आते जा रहे हैं, थैंक यू. अब मेरे बात तो यहाँ आ रहे हैं सुप्रतिम, और दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर नीरज आपका साथ देंगे एंड मैनचेस्टर रेडियो पर जैसी. अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. मेरी आपसे अगली मुलाकात होने वाली है नेक्स्ट वीक. यस, सैटरडे एंड संडे हमारे लिए तय किया गया है ना कि हमारी मुलाकात होगी, तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी. और कोशिश यही कीजिएगा कि आप भी वक्त पर पहुंच जाएं, ये ना हो कि मैं इंतज़ार करती रहूं. बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग एंड वीक अहेड. बाय.
1: ये है लाइका गोल्ड. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी. खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी.
2: खतरों के खिलाड़ी.
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.

0: kon.
1: That was the super Kishore Kumar, enacted by Kishore Kumar, sung by him as well. Film ka naam tha Half Ticket. Aur isme थे मधुबाला एंड किशोर कुमार हिमसेल्फ एंड प्राण वॉज द अदर लीड एक्टर फॉर दिस. इसमें जो आपने जो गाना सुना उसके इट वॉज द म्यूज़िक गिवन बाय सलील चौधरी साहब एंड इट वॉज वन ऑफ द फनीएस्ट मूवीज दैट वन कैन सी फ्रॉम दैट एरा. तो अगर आपने देखी नहीं है ज़रूर देखिएगा. और उससे पहले जो गाना था टिक टिक टिक, दैट वॉज फ्रॉम द फिल्म हम जोली, अनदर सुपर हिट फिल्म, जिसको गाया था खूबसूरती से लता मंगेशकर एंड रफ़ी साहब ने. एंड दिस वॉज पिक्चराइज ऑन दैट ऑन द लवली मुमताज़. इसमें थे लीना चंद्रवारकर, मुमताज़ एंड जितेंद्र साहब. एंड दोनों फिल्म्स के म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मण खान प्यारे लाल. आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग्स. दीज वर आर बैक टू बैक सॉन्ग्स टू स्टार्ट ऑफ आवर विंटेज गोल्ड फॉर टुडे. माय नेम इज सुप्रतिम. आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह एंड आई विल बी विद यू अप अंटिल 10 o'clock tonight. बहुत सारे गाने हैं बहुत सारे एरास से, लेकिन द वन थिंग दैट इज कॉमन इज दैट दे आर द चॉइसेस्ट एंड द रेयरेस्ट सॉन्ग्स फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. आगे बढ़ने से पहले मैसिव थैंक यू टू सरिता जी. शी विल बी बैक नेक्स्ट वीकेंड फॉर हर शो. एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी थ्रू आउट द वीक देयर बी लॉट्स ऑफ म्यूजिक ऑन लाइक अ गोल्ड एज ऑलवेज इज. थैंक यू फॉर योर मैसेजेस. दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग इन एंड रियली अप्रिशिएट द अप्रिसिएशन दैट कम्स आवर वे. सो कीप देम सेंडिंग. अपना व्हाट्सएप हमें ज़रूर भेजते रहिए. कुछ मैसेजेस आने वाले हैं, उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो मुझे एक लिसनर ने एक्चुअली याद दिलाया. बहुत दिनों बाद मैं ये गाना प्ले कर रहा हूँ. सो फिल्म का नाम है सजा. जाइए कहीं मत, सुनते रहिए विंटेज गोल्ड. आई एम सुप्रतिम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह.
2: WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: One British pound can get you 127.65 Indian rupees. Don't forget to make the transfer in the branch, online, or you can use the SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a wonderful song. Thank you to Derry Valley for this feel good song. Iske ye awaazein thi Uma Devi ki. Uma Devi jinko Tun Tun ke naam se jana jata tha Hindi film industry mein. It is a shame actually. We found a comedian but lost a singer in Uma Devi. She could have been such a brilliant star. Is film mein the सुरेंद्र जी और नसीम बानो साहिबा दे वर द लीड एक्टर्स और ये अनोखी अदा 1948 की एक सुपरहिट फिल्म थी मेड बाय द ग्रेट महबूब खान. इसके बाद आने वाला है एक और बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म साधना से एंड उसके बाद कुछ मैसेजेस एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द मैसेजेस.
0: साउंडिंग बेटर देन एवर इन द सनशाइन. दिस इज लाइक अ गोल्ड.

0: गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। Every morning, a shopkeeper opens his doors.
2: Lights on, shutters up, staff ready.
1: But today's customers don't start on the high street.
2: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
1: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
2: They walk into your competitors.
1: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
2: Hearty Hanks. The digital agency that doesn't play safe.
0: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
3: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
0: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627 यार
1: विचोर क्रिएटिव टीम इवेंट्स एंड पीस नेशन यूके ब्रिंग्स टू यू द किंग ऑफ सूफी म्यूजिक लखविंदर वडाली टू लंदन एंड बर्मिंघम दिस अक्टूबर फॉर स्पॉन्सरशिप इंक्वायरीज कॉल 07959255036
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: What a perfect song for a Sunday evening. I hope you enjoyed that one. It was from the film झुमरू, जो 1961 की एक फिल्म थी, जिसमें ये गाना ऑब्वियसली गाया था किशोर कुमार साहब ने. म्यूजिक डायरेक्टर भी किशोर कुमार थे एंड एक्टर फॉर द फिल्म वर किशोर कुमार एंड मधुबाला. देयर इज एन इंटरेस्टिंग ट्रिविया इन दिस फिल्म, विच इज इसमें थोड़ा फैमिली कनेक्शन था. सो मधुबाला एंड हर रियल सिस्टर चंचल ऑल्सो एक्टेड अलॉन्ग विथ हर as a side actor or character actor rather. And किशोर कुमार के जो भाई साहब हैं, बीच वाले भाई हैं, तीनों भाइयों में अनूप कुमार, he was also acting along with किशोर कुमार. So there you go, four of them together. And this is the time when I think Madhubala and किशोर कुमार were married to each other. So yeah, it was a family affair, I should say. I hope you enjoyed the song. ऐसे और गाने आने वाले हैं, लेकिन इसके आगे आएगा न्यूज़. बट न्यूज़ से पहले आई विल लीव यू विथ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम हेमंत कुमार मुखर्जी फ्रॉम द फिल्म काबुलीवाला. अगर आपने देखी है, ये 1961 की बलराज साहनी की एक फिल्म थी काबुलीवाला, बेस्ड ऑन रविंद्रनाथ टैगोर्स नॉवल कॉल्ड काबुलीवाला, वेयर a Pathan comes from Afghanistan into Calcutta and makes friends with a little girl because she reminds him of his daughter back home. Wonderful song. Sunte rahiye Vintage Gold. I will see you on the other side of the news.
1: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station.

0: गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द सेकेंड आवर ऑफ विंटेज गोल्ड. ये गाना जो आपने सुना, दिस वॉज एन अमेजिंगली संग सॉन्ग बाय मन्नदा एंड उषा मंगेशकर जी. एंड इसमें फिल्म का नाम था सॉरी प्यार किए जा, एंड दिस वॉज पिक्चराइज ऑन महमूद एंड मुमताज, अ वेरी वेरी यंग मुमताज दैट टाइम. इसमें और थे साथ में कल्पना जी, किशोर कुमार साहब एंड शशि कपूर जी. वंडरफुल फिल्म, आई होप यू इन्जॉयड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. म्यूजिक डायरेक्टर इसके थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड राजेंद्र किशन वॉज द लिरिसिस्ट. उससे पहले जो आपने गाना सुना रफ़ी साहब की आवाज़ में, दैट वॉज फ्रॉम द फिल्म आई मिलन की बेला. शंकर जयकिशन का म्यूज़िक एंड राजेंद्र कुमार, सायरा बानू एंड धर्मेंद्र इन द लीड फॉर दैट फिल्म. होप यू एंजॉयड बोथ द सॉन्ग्स एंड अमेजिंग, राइट? वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ विंटेज गोल्ड. टू दोज हू जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम और आर न्यू टू विंटेज गोल्ड, क्विक रिमाइंडर, Vintage Gold is found only on Leica Gold, and we play the most beautiful, choicest, rarest gems of the Hindi film industry, especially from the 40s, 50s and 60s, and to be honest, some from 30s as well. Mera naam is Supratim. I'm sitting in for Sandy Shah today, or rather this weekend. I was sitting with him. Thank you so much for your messages. It's always so encouraging for us whenever we hear from you. And the fact that you like the songs and sometimes correct me as well when I'm wrong. So, thank you very much for everything. इसके बाद एक मैसेज फ्रॉम SBI. उसके दूसरी तरफ बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतरीन गाना पंकज मलिक जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम डॉक्टर. सुनते रहिए विंटेज गोल्ड.
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 today could get you 127 rupees and 65 paise if you make the transfer through the SBI branch online or use the SBI Yono mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: This was from the legendary Pankaj Malik, who was the pioneer of Bengali and Hindi films, and what an amazing voice he had, and he was an actor as well. ये फिल्म का नाम था डॉक्टर, जो 1941 की एक फिल्म है, एंड सरप्राइज सरप्राइज, लाइक अ गोल्ड एंड विंटेज गोल्ड हैव दिस इन देयर आर्काइव्स. सो ब्यूटिफुल सॉन्ग. दिस फिल्म वॉज मेड बाई सुबोध मित्रा. इट वॉज अ सोशलिस्ट, सोशल इवेंट्स को लेके एक फिल्म थी 1941 में, अबाउट अ लाइफ ऑफ अ डॉक्टर. म्यूजिक बाय पंकज मित्रा, एंड इट वॉज Yeah, well liked around that time, I'm told. So I hope you enjoyed the song. Kuch messages, and uske baad aise hi gaane, inka silsila jari rahega. Mera naam is Supratim. I'm sitting in for Sandy Shah, and you're listening to Like a Gold.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Sunny spells in 3, 2, 1. Pop to Co-op. Get any two packs of 100% British barbecue favourites for £6.50. Like smash burgers and sweet chilli chicken kebabs. Co-op. Owned by you. Right by you.
3: And 6th of October. Selected products subject to availability. Co-op Group food stores only. Full times at co-op.co.uk/summer.
4: Yeah, like a gold.
5: Like a gold.
6: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
7: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
6: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
11: Location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
15: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
17: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
18: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Thank you to Derry Valley for that feel-good song. Lata ji ki khubsurat awaz. Music tha Naushad sahab ka and lyricist the iske Majroo sahab. ये दिलीप कुमार एंड नरगिस जी थी इस फिल्म में कोई मेरे दिल में, जो आपने भी सुना है गाना. फिल्म का नाम अंदाज, एक 1949 की सुपरहिट फिल्म. इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत गाना, लिटिल स्लो पेस्ट फ्रॉम द ग्रेट किशोर कुमार.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड.

0: तुम बिन जाऊं कहां, रफी साहब की खूबसूरत आवाज, मजरू साहब का के कलम का जादू एंड आर डी बर्मन की म्यूजिक, शशि कपूर एंड आशा पारेख की जोड़ी थी इसमें. एंड व्हाट अ वंडरफुल फिल्म एंड व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग. आई होप यू एंजॉयड दिस वन. थैंक यू फॉर योर मैसेजेस. कुछ बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं एंड लुक्स लाइक पीपल आर एंजॉयिंग दिस ऑन अ संडे इवनिंग विच इज़ वंडरफुल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. इसके बाद एक और बहुत खूबसूरत गाना आने वाला है शमशाद बेगम एंड उषा मंगेशकर की आवाज़ में. सुनते रहिए विंटेज गोल्ड. मेरा नाम है सुप्रतिम. आई एम सिटिंग इन फॉर द लेजेंड सैंडी शाह टुडे.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
2: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी. खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी.
3: खतरों के खिलाड़ी.
4: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel, at all protected.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danu. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208 767 2142.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208 839 0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
14: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
15: Like a Radio Network.

0: इट्स क्वाइट अ फन सॉन्ग एक्चुअली इफ यू हैव सीन द मूवी. खैर मूवी का नाम पहले बता दूं, इट इज़ फ्रॉम द फिल्म ब्लफ मास्टर 1963 की शम्मी कपूर एंड सायरा बानू वर द लीड एक्टर्स इन दिस. एंड ये आवाज़ें थी शमशाद बेगम एंड उषा मंगेशकर जी की, और इसके लिरिसिस्ट थे राजेंद्र किशन एंड म्यूजिक वॉज बाय कल्याण जी आनंद जी. The interesting bit is that both the ladies were singing this song, but it was picturized on Shammi Kapoor, who was dressed as a woman, and Saira Banu alongside. So that's why, hence there are two women singing this song, and beautifully picturized on the both of them. इंटरेस्टिंग थिंग थी अबाउट ब्लफ मास्टर इज़ दैट ये मनमोहन देसाई ने बनाई थी, वही मनमोहन देसाई जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई अमिताभ बच्चन के साथ. बट मनमोहन देसाई ने यह फिल्म बनाई तो थी, लेकिन इट वॉज आफ्टर शमी कपूर फेल आउट विथ सुबोध मुखर्जी, हु वॉज द ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द मूवी. एनी वे, इसके साथ हम आ चुके हैं अपने एंड टूअर्ड्स द एंड ऑफ आर थर्ड आवर, सेकेंड आवर सॉरी. एंड मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना जान पहचान से, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द न्यूज.
1: LYCA. This is Leica.

मुंह से मत लगा, चीज है बुरी, देख बच जरा, चीज है बुरी। छोड़ दे ये मैं कशी, मेरे हम नशी, मेरे हम नशी। अरे बात मत बा...

0: What a wonderful song, a playful song, picturized on Johnny Walker. Film का नाम भी Johnny Walker, 1957 की ये फिल्म, और इसमें जो गाना गाया था ये रफ़ी साहब और मन्ना दे की खूबसूरत आवाज़ें थी, ओपी नैयर का म्यूज़िक एंड सरप्राइजिंगली हसरत जयपुरी की लिरिक्स. ही नॉर्मली राइट्स क्वाइट सीरियस सॉन्ग्स, बट व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग. और इससे पहले जो गाना आपने सुना दैट वाज फ्रॉम द फिल्म शागिर्द, एंड अगेन ब्यूटिफुली सॉन्ग बाय रफ़ी साहब एंड लता मंगेशकर. रफ़ी साहब एट हिज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज सॉफ्ट वॉइस सॉन्ग, एंड इसमें जॉय मुखर्जी एंड सायरा बानो थे, एंड मजरू साहब की लिरिक्स एंड लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूज़िक. I hope you enjoyed these two back-to-back numbers, and there are many, many more songs on the way. Guess what? We are in the third hour of the show. पता नहीं कैसे वक्त इतनी जल्दी निकल गया. Thank you for your messages. They've kept me on my toes, and I've really enjoyed reading them and responding to some of you. So thank you very much for encouraging us and encouraging me. Hope you're having a good Sunday. It's been a long day. It's 9:15 right now. I hope you've heard Like a Gold throughout since morning. Deep Raja, Ritu ji, and then Anurag and Sarita ji, I'm sure have kept you entertained with the choicest and the best music, the retro music that Like a Gold offers. And thanks to you, we are the number one retro channel, which is amazing, and a testament to all the hard work that the team put in, and to our listeners who enjoy it and show us your love. So thank you very much for everything. इसके बाद कुछ messages, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत गाना सैगल साहब और उमा देवी जी की आवाज़ में, एंड आई टॉक अबाउट दैट लिटिल लेटर. सुनते रहिए विंटेज गोल्ड. मेरा नाम सुप्रतिम, आई एम सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह ऑन दिस संडे इवनिंग.
1: WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 can get you 127.65 rupees. As long as you transfer the money at the SBI branch, online, or you can use the SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: How did you find that song? It was from the film Dharti Mata. थोड़ी सी पुरानी फिल्म है, 1938 की फिल्म है ये, और KL सहगल साहब की खूबसूरत आवाज़ साथ में. मैंने गलत बोला था, उमा देवी, एक्चुअली इट इज़ उमा शशि, इट्स नॉट उमा देवी उर्फ टुन टुन, बट उमा शशि हु वॉज द लीड एक्ट्रेस एज वेल एज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग. इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे पंकज मलिक, एंड पंकज मलिक का हमने गाना सुना था सेकेंड आवर में, और इनफैक्ट ही एनएक्टेड इन दैट फिल्म कॉल्ड डॉक्टर. वॉट अ वर्सेटाइल मैन ही वॉज. आई होप यू इन्जॉय दिस सॉन्ग. ऐसे बहुत बेहतरीन गाने हमारे पास छुपे रहते हैं जो हम आपको हर वीकेंड सैंडी शाह इस प्रोग्राम के थ्रू सुनाते हैं. सो कीप ट्यून्ड इन, एंड यू कैन इवन स्प्रेड द वर्ड, टेल अदर पीपल अबाउट दिस वंडरफुल प्रोग्राम, एंड दे कैन लिसन टू लाइक अ गोल्ड टू. और कुछ मैसेजेस, फिर बात करूंगा, एंड वी लिसन टू अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग.
1: ये है लाइक अ गोल्ड. बिग डेज आउट विद रंबली टॉमीज. हॉप टू को-ऑप. Grab a meal deal, main, side and drink for just £3.85 for co-op members. And it even includes ice creams. Co-op. Owned by you. Right by you.
2: Selected products subject to availability. Co-op group membership required. £1 joining fee. Full terms at co-op.co.uk.
3: Ye hai.
4: Like a gold.
3: Like a gold.
5: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
5: साफो ट्रेवल. At all protected.
8: Search is changing.
9: Customers aren't just using Google anymore.
8: They're asking AI.
9: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
8: One business, one recommendation.
9: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
8: Will your business be the answer?
9: Or the one that got left behind?
8: The future of search has already started.
9: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
8: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
10: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
11: Dad,
12: what's wrong, beta?
11: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
12: I will run down to the money exchange now.
11: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
12: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
13: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
16: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Thank you to Derry Valley for that feel good song. Ye bahut khoobsurat gana tha. शंकर दास गुप्ता और सुरेखा जी की आवाज़ें थी इसमें एंड इट वॉज पिक्चराइज्ड ऑन अ वेरी यंग देवानंद साहब एंड सुरैया वॉज द लीड एक्ट्रेस. फिल्म का नाम जीत 1949 की एक खूबसूरत फिल्म. कुछ मैसेजेस और उसके बाद लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत अच्छा गाना फिल्म नागिन से. सुनते रहिए विंटेज गोल्ड.
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स.
2: Laika Radio Network is proud to team up with Bharatiya Vidya Bhavan for a summer showcase 2026 at the Harrow School. Experience the richness of Indian classical arts and culture in an unforgettable celebration of music, dance and artistic excellence on Saturday, 8th of August. And this starts from 3 p.m. onwards. Tickets are available on TicketSource or you can call 07421-497541.
0: ये है लाइका गोल्ड.
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय खतरों के खिलाड़ी ऑन कलर्स टीवी। खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 पीएम ऑन कलर्स टीवी।
1: खतरों के खिलाड़ी।
3: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
4: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
4: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
4: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
3: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
4: टू बुक कॉल आवर लंदन office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
8: Southall Travel
9: can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.
10: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
11: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
13: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
14: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station.

0: What a beautiful song. कागज के फूल से ये गाना था, गीता दत्त की खूबसूरत आवाज़, गुरुदत्त और वहीद रहमान पे पिक्चराइज्ड, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म दैट गुरुदत्त साहब मेड. वेल, इसी के साथ वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द थर्ड आवर, तो मेरे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़े जा रहा हूँ खाली हाथ. मैं दो और बहुत ही बेहतरीन गाने छोड़े जा रहा हूँ आपके साथ. वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम द फिल्म अनमोल घड़ी, सॉरी, शमशाद बेगम की आवाज़ में, और उसके बाद माय पर्सनल फेवरेट, एक और फेवरेट, ए मालिक तेरे बंदे हम, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, दो आंखें भर राहत फिल्म से. सो गाने का सिलसिला यहाँ चलता रहता है, लाइक अ गोल्ड में ऑन गोल्ड नाइट्स, एंड टुमारो मॉर्निंग काजल विल बी इन एट 6 o'clock विद द ब्रेकफास्ट शो. Sandy Shah will be back on the hot seat with Vintage Gold next weekend. And from me, it is signing off now. Have a lovely, lovely week ahead and a very good night.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: Laika Gold.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथहॉल ट्रेवल, atoll protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
10: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 020-3773-6333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
11: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
12: जानना है

0: आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं